0: ஆத்மனே பிரணத க்ளேச நாசாய கோவிந்தாய நமோ நமஹ.
1: கிருஷி ரேடியோ சமய சங்கேத.
2: अहिले हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बिहानको ठिक 6 बजेको छ।
3: नारायण खेती गरौ है।

0: कृषि रेडियो समय संकेत।
1: अहिले हाम्रो स्टुडियोको घडीमा दिउँसोको ठिक 3 बजेको छ।
2: नारायण खेती गरौ है।
3: ए सब

0: रहेछ नि है। त्यही त मुटु त लास्ट हेर्दा ब्रो त्यस्तो होइन क्या के भयो तँलाई
1: उठ हेर्न हेरेर हेरे कति बाँचेर
0: मर्छ मुटु उठ हेर्दा किन होइन हेरेन हेरे नचेर गटुपे न
1: के भयो मुटु
0: होइन मुटु
1: पिसाको

0: कृषि रेडियो समय संकेत।
1: अहिले हाम्रो स्टुडियोको घडीमा साँझको ठिक 5 बजेको छ।
2: नारायण खेती गरौ है।